ठंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए। उस विच इतनी शक्ति

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक

लड़न दी समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया कि खंडे बाटे दी पहल दे के ऐसी रूह फूक दित्ती कि मौत दा कोई डर नहीं, किसे जरवाने दा कोई

नमो श्री प्रभक्ति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बढ़ली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री।

सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पत्रिका झले नहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी फिरे शाम है मोक्ष दाती

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे है। कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दंती।

0: भाई नंदलाल जी।
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुनाए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अमर
0: फतेह सतगुरु की। ये जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देख खालसे को पुरख जाएंगे भाई, देख खालसे को पुरख जाएंगे
1: झूलने
0: हस्ती साजे, झूलने गे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत धुके सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदे आ

विसाहो न की मृतक नाल विहाई ऐ सुहाग न थीए विस हला हल बीज कै क्यों अम्यों लिए।

तय हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। जूं चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंश घात अपराध करारे मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे।

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे चोला चंदन पर हरे खरखे पलटे क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे अपन हथी आपनी जड़ आप उपटे

सिर छार उड़ावे। तुम में अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी।

गौरी देख के कर दे परवासा, थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

अरे वो परमात्मा अपनी शिव की प्रतिपालना किवें कर दे। जल अगन में है जन आप उधारे कर अपने दे रख है हाथ, अपना हाथ दे के रख लेंदे, सिख नु कढ लेंदे। किवें

परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

ई पावन पवित्र शब्द। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे मुखार बिंद तो उच्चारण कीता है। जिस शब्द अंदर जीव प्राणी मात्र नु सतगुरु जी उपदेश देंदे ने और ए गल समझा रहे ने, हे प्राणा वाले प्राणी मनुख, एक नाम नु त्या, एक नाम नु याद कर, क्योंकि ए नाम ही तेरे नाल जाना है। सो साध संगत, धन गुरु नानक पातशाह दी इस पावन पवित्र शब्द अंदर सानू कलजुगी जीवां नू प्रेरणा देनी बड़ा सुंदर ख्याल करके आओ आपा इस शब्द नू मन विच वसाईए, हिरदे विच इस तरह धारण करिए जिवें सतगुरु समझा रहे ने।

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारियां थावां ते राखी करना, सारियां थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूंगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। एक कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला, जिहड़ा है ही बेगुरा, वह कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हू अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औख दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

नवनिद नाम निधान गृह तेरी मन बाचित सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी।

दिन राती आराधा प्यारो निमख ना की जे ढीला और ए भी गुजरी राग और गुजरी राग भी तुम्हार है।

मांगो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

किया भी। कहिंदे ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, नाउ तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करन वाला नरका दे विच नहीं जांदा, सिमरन करन वाला। ते जिहड़ा सिमरन करदा है ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਵੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

आठ दम को छिपरो होयो लखीना भूलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीच